उजाला रेडियो डे अबे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

ताली ताक जुम ताक ताली ताक जुम ताक धलाम ताक जुग ताक ताली के नतु ताक नाक ताक जुम ताक नाक नाक जुम ताक नाक नाक जुम ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के ने ताली जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के जम तारी

याद रहेगा, हाँ याद रहेगा, प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। फिल्म उमर कैद और गीत के गाने वाले लता जी एंड मुकेश जी। उजाला रेडियो है ये।

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। कुमार सानू की आवाज। और अब मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे शारदा के साथ में फिल्म गुमनाम का गीत।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Stichting Abhiyan. Stichting Swadesh और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन और खुशतस दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।
1: Routine. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: 4 juli.

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम से परिवार सुखाई अनूप बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 70 साल के आयु में ज़ीफ़न्तख यार औत। लड़कन सुषमा, राकेश, माया, हेलन और सीमा के माँ सुरेन, दिनो, फेदो और जमाल के सास, सभी लड़कन के नानी। आम्स्टर्डम की रहने वाली विधवा सत्यवती अनूप की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। बेटी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत प्रसाद सुखाई की विधवा थी। आम्स्टर्डम से लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते सोमवार को 70 साल के आयु में ज़ीफ़न्तख यार औत। लड़कन सुषमा, राकेश, माया, हेलन और सीमा के माँ, चार दामाद सुरेन, दिनो, फेदो और जमाल के सास और सभी लड़कन के नानी। आम्स्टर्डम की रहने वाली विधवा सत्यवती अनूप की मृत्यु हो गई है। बेटी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत प्रसाद सुखाई की विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया आज सोमवार के शाम में 4 बजे किए जाएंगे वैस्खार्द क्रेमाटोरियम ओक मेरवैख 205 आम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 45 57 03 25। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार सुखाई और परिवार अनूप के दुख में शामिल।

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: बहारों का मौसम है, आज खुल के इकरार कर लो, अपनी मोहब्बत का आज इजहार कर लो।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

आशा भोसले एंड शमशाद बेगम जी, फिल्म किस्मत से गीत आप सुने। एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मोहम्मद रफी साहब अब हिस्सा लेंगे।

चरण संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर, आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने।

0: आप हर एक जो इस वक्त उजाला रेडियो का प्रोग्राम को सुन रहे हो।
1: आज नित नचना तो फिर जद नचना।
0: आपको हम धन्यवाद कहना चाहते हैं यार कि आप जो सुन रहे हो। और अगर आपकी जन्मदिन सालगिरह आज है ना, या तो आने वाले दिनों में विवाह संस्कार शादी होंगे, तो फरमाइश आप दे सकते थे यहाँ उजाला रेडियो पर। मारत इस नो इतला तू जाने है तो बैल करके रिकल कर ले 020-409-8-07 en mailtje sturen is sneller. Stuur een mailtje naar info@ujala.nl.

या उजाला रेडियो का प्रोग्राम जारी करते हुए सुनने वालों, अब एक फिल्म से गीत। फिल्म का नाम है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। गाने वाले जावेद अहमद, शारिफ तौशी एंड अरिजीत सिंह।

और हाँ, उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अब अगला गीत फिल्म अग्निपथ से होंगे, अजय अटोर एंड श्रेया घोषाल से।

बहुत प्यारा सा गीत महेंद्र कपूर और आशा जी से आप सुने, फिल्म का नाम धूल का फूल और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों, मोहम्मद रफी साहब अब प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।

आप नाराज, खुदा खैर करे। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म प्यार मोहब्बत का गीत, और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम। एक बार फिर आशा जी, और अब है शमशाद बेगम के साथ में।

और कजरे ने ले ली मेरी जान। आशा जी के साथ शमशाद बेगम से आप सुने फिल्म किस्मत का गीत उजाला रेडियो पर।

ये उजाला रेडियो है, यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं, जो अम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं निशा बोल रही हूँ। आप इत्मीनान से खूबसूरत एहसासों में प्रोग्राम सबरंग से लुत्फ उठाइए, मज़े लीजिए। हम आपको सुनवाने के लिए एक के बाद एक सुरीले नगमे चुने हैं, जिसे सुनने से एक पल के लिए अपने जिम्मेदारियां भूल जाएंगे। शुरू करती हूँ दुआ से, प्रार्थना से। खुदा आपको ईमान की सलामती अता करे, सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, और खुदा की निगहबान फरिश्ते आपके और आपके ख़ानदान की हर जगह हर पल हिफाजत करे। आपको रूहानी और जिस्मानी सेहत के खजानों के साथ सलामत रखे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता।

इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन के विश्वास कमजोर होना। ऐसे ही रूहानी अंदाज में नाज शरीफ पेश है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको भक्ति और मजहबी संगीत सुनवाए। गजल शौकीन के वास्ते हमने कुछ गजलें चुने हैं सुनवाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इन गजलों से लुत्फ उठाएंगे, मजे लेंगे। ऐ शमा तेरी लौ में वो कौन सी खूबी है जो तुझसे गले मिलकर जल जाता है परवाना। चांद अपना सफर खत्म करता रहा, शम्मा जलती रही, रात ढलती रही।

चांद अपना सफर खत्म करता रहा। असद भोपाली और जफर गोरखपुरी का कलाम था, उषा खन्ना की मौसिकी, आवाज लता मंगेशकर की। करके वादा मुकर गया, आखिर तू भी दिल से उतर गया। उन्हें बेवफा जो कहूँ तो तौहीन है वफा की, वो तो वफा निभा रहे है, कभी इधर तो कभी उधर, गुल फेंके है गैरों की।

गुल फेंके है गैरों की तरफ। महान गजल गायिका बेगम अख्तर से आपने भी ये गजल सुनी। तेरे जाने का गम भुलाता हूँ, तेरा आने की याद आती है। हैली इस बेबसी के आलम में, किस जमाने की याद आती है। आज रात भी गुजरी है कल की तरह।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गज़ल शायर अमीर कज़लबश का कलाम था, आवाज़ और मौसिकी खुद चंदन दास की। तेरे प्यार में दो पल की जिंदगी बहुत है, एक पल की हंसी एक पल की खुशी बहुत है। ये दुनिया जाने या ना जाने, तेरी आंखें मुझे पहचाने ये बहुत है। ऐसे में तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा।

दिल छू लेने वाले नगमा पेश था रफी साहेब की मीठी स्वर में। प्रोग्राम का रुख जरा सा बदल देते हैं, तो आइए सुने अब गीता दत्त अपनी शोखी आवाज में क्या सुनाएंगी। लीजिए पेश है।

सुनहरी दौर के गाने आप सुन रहे हैं। संगीतकार सलील चौधरी संगीत दिया था और शैलेंद्र ने तर्ज को लिखे थे। बेबसी है, उदासी है और दर्द है, सब है मेरे पास, सब है मेरे पास, बस एक तुम ही नहीं हो। काहे कोयल शोर मचाए रे, मुहे अपना कोई याद आए रे।

अमर गीत आपने अभी शमशाद बेगम से सुना। राम गंगोली संगीत से सवारे थे और शहजाद लखनवी का लिखा तर्ज था। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं सुनाएंगे मन्ना दे साहब।

जाएगी फिर भागती है, फिर भागती है। मैं इधर ढूंढता हूँ और तुम्हारी छुपती है, मुझसे दूर भागती है, धोखा देती है।

0: मुझसे जमाना दूर हुआ, बोतल ने कहा
1: बताऊं क्या कर?
0: नहीं बता।
1: अच्छा बता।
0: हर दर्द के मारे को एक दिन पलती है।

0: तुझको छोड़ दिया, खूब किया, अरे खूब किया।
1: सुनहरी दौर का गीत पेश था, गाने वाले थे मन्ना डे साहब। गाने जो प्रोग्राम सबरंग में आप सुन रहे हैं, आज भी इन गानों में वही ताजगी है। बार बार सुनो तो भी जी नहीं भरता। जी हाँ, मुझे एहसास है, क्योंकि बहुत से लोग जब भी मिलते हैं कहते हैं कि वो बेसब्री से इस घड़ी को इंतजार करते हैं।

अभी आपने स्वर की देवी लता मंगेशकर से ये गीत सुना। संगीत से सवारे थे नौशाद अली ने। कहते नहीं किसी से मगर, मगर जानते हैं हम, रोया जरूर होगा वो बिछड़ने के बाद।

फिल्म गीत गाया पत्थरों में से ये गीत लिया है। इस फिल्म में अदाकारी किए थे जितेंद्र और राजश्री। अब लीजिए अगला गीत पेश है रफी साहब की आवाज़ में।

फिल्म उड़न खटोला में से ये गीत पेश था और ये अदाकार दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था। साथ में थी अदाकारा निमी। गीता दत्त से आइए सुने ये गीत।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में निशा इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। कई हफ्तों से हमने महान अदाकार देवानंद के बारे में बयां कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बतलाई थी कि देवानंद का भाई चेतन अनंत की पहली फिल्म थी नीचा नगर। ये फिल्म का रील्स डिब्बा में बंद पड़ा था और कभी रिलीज नहीं हुआ था। इसके वजह से चेतन अनंत ने हिम्मत हार गया था, दूसरी फिल्म बनाने को तैयार अब नहीं था। अपने भाई की हालात से देवानंद खुद परेशान था। फिर उन्होंने फैसला किया, क्यों ना हम मिलकर अपने भाई के साथ फिल्म नेवकतन शुरू करें, नेवकतन प्रोडक्शन का नाम से। चेतन अनंत को अपने भाई की फैसला से दिल में फिर जज्बा जाग उठा, क्योंकि फिल्म जो बनाएगा उसमें देवानंद मकबूल गायिका और अदाकारा सुरैया के साथ काम करेंगे। कहानी आगे बढ़ाने से पहले हम आपको फिल्म विद्या का गीत सुनाते हैं, जिसमें देवानंद पहली बार सुरैया के साथ काम किया था।

कभी नैन से नीर फिल्म विद्या का गीत आपने अभी सुना, जिस फिल्म में देवानंद और अदाकारा सुरैया पहली बार एक साथ अदाकारी किए थे। इस गीत से पहले आपने सुना कि देवानंद अपने भाई चेतन अनंत के साथ मिलकर नया बैनर बनाए निवकतन प्रोडक्शन। अब चेतन अनंत का हौसला फिर बुलंद हो गया था, कोई रुकावट नहीं थी दूसरा फिल्म बनाने में। फिल्म थी अफसर, उसे एहसास था कि फिल्म अफसर जरूर कामयाब होगी, क्योंकि सुरैया तैयार थी इस फिल्म में देवानंद के साथ काम करने को। बिना कोई सवाल किए वो इकरारनामा पर दस्तखत की थी। दिल में खुशी की लहर इसलिए कि रोज अब वो शूटिंग के दौरान देवानंद उसका प्यार उसके साथ रहेगा। फिल्म अफसर में एक साथ काम करने से देवानंद को कोई रुकावट नहीं थी सुरैया के घर जाने से। देवानंद ने कहा कि उसे सुरैया से अब मोहब्बत है, वो उसे अपना बनाना चाहते थे। ये एहसास कि जिस दिन से वो सुरैया से नहीं मिल सकते थे वो बेचैन रहते थे और 100 बहाने ढूंढते टेलीफोन के जरिए बातें करने को। देवानंद ने कहा ये बात नहीं है कि उसे सुरैया से पहले प्यार नहीं हुआ था। हाँ हुआ था, कई बार हुआ लड़कियों से प्यार, और ये भी कहा उसने कि शादीशुदा औरतों से भी जिसके साथ जिस्मानी ताल्लुक भी था। धीरे धीरे अब सुरैया की नानी जी और मामू जान को देवानंद का घर आना पसंद नहीं थी। देव रोजाना ट्रेन से बांद्रा स्टेशन से चर्च गेट स्टेशन पर उतरते थे और वहां से चलकर मैरिन ड्राइव जाते थे सुरैया से मिलने को। उससे मिलने के संगीतकार प्रोड्यूसर या कोई और आते थे, पर सिर्फ देवानंद से मिलने के लिए वो बेताब रहती थी। देवानंद को अंदर आते ही सुरैया उसके साथ अकेले में बैठकर बातें करती थी, जो घर वालों को अब बिल्कुल पसंद नहीं थी और देवानंद को घर आने से अब मना कर दिए थे। सुरैया ने इसके खिलाफ थी और अपने नानी माँ और मामू जान से बगावत करने लगी। सिर्फ सुरैया की माँ अपनी बेटी के साथ थी। नानी माँ और मामू जान के बाहर वालों और बाकी परिवार कान भरते थे कि ये कैसे हो सकता, एक हिंदू का लड़का एक मुस्लिम की बेटी का मिलन, ये नामुमकिन है। इस मौजू को लेकर सुरैया का जीना मुहाल हो गया था, ना घर में चैन ना बाहर चैन। दोनों ने आपस में मिलने की तरह तरह की तरीके अब ढूंढते थे। अब हम आपको फिल्म अफसर का गीत सुनाते हैं। इस फिल्म में देवानंद और सुरैया ने अदाकारी किए थे।

मनमोरा हुआ मतवाला गायिका और अदाकारा सुरैया की आवाज में पेश था ये गीत। संगीत देने वाले थे सचिन देवबर्मन। आखिरी बार घर में मिलने के बाद सुरैया ने देव से कहा, कल शाम को ठीक 7 बजे फोन करना, वो टेलीफोन के आसपास रहेगी। नानी माँ को जब पता चला कि सुरैया हर रोज 7 बजे देव से बात कर रही थी, तो नानी जी ने सुरैया को मना कर दिया टेलीफोन उठाने को। पर देवनंद हारने वालों में से नहीं था। वो बार बार फोन करते रहे और नानी जी बार बार टेलीफोन उठाकर पटक देती थी। दोनों को आपस में मिलने की अब एक ही मौका था, और वो भी शूटिंग का दिन। सिर्फ शूटिंग के वक्त, शूटिंग के दौरान नानी माँ और मामू जान इन दोनों का एक एक हरकत पर नजर रखते थे। जो डायलॉग डिमांड करता था वो अदायगी को निभाकर फिर नानी के पास बैठ जाती थी। जिस हालात में देवनंद अब थी वो बेबस थे, और कहा कि अब उसे एहसास हुआ कि जिन हालात से अब वो गुजर रहे हैं, इन हालात में प्यार करने वाले खुदकशी करते हैं। तरस गया था वो सुरैया से अब दो बात करने को। इतना पहरेदारी उसकी आसपास थी क्योंकि नानी माँ और मामू जान के साथ और कई रिश्तेदार को साथ में लाते थे। देव ने कहा कि सुरैया से मिलने को जमीन और आसमान एक कर देगा। सुरैया से मिलने के लिए क्या तरकीब सोचा था, सुनाते हैं एक गीत के।

बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। फिल्म काला पानी का गीत था जो देवानंद पर फिल्माया गया। इस गीत से पहले आपने सुना कि देवानंद ने सुराया से मिलने के लिए जमीन और आसमान एक करेंगे, लेकिन इतना पहरेदारी थी कि मिलना नामुमकिन था। सुराया का एक दोस्त जो कैमरा माम था और परिवार में आना जाना था, देविचा नाम था और देवानंद और सुराया की प्यार की कहानी से वाकिफ था। इस फिल्म में भी देविचा कैमरा संभालते थे। देव उससे मिलकर कहा, देविचा मेरा एक काम करोगे? आप हुकुम कीजिए साहेब। देव जल से एक टुकड़ा कागज पर लिखा, नोजी माय लव, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तेरे बगैर जिंदगी वीरान है। शाम को जब शूटिंग खत्म हुआ तो देविचा सुराया की सामान समेत रहे थे, तो उसने कागज का टुकड़ा सुराया के मेकअप बॉक्स में रख दिया। जब वो इस खत को पढ़ा तो फूट फूट कर रोने लगी, फिर जवाब दिया, कल ठीक 7 बजे मुझे फोन करना। अगले ही दिन ठीक 7 बजे जब देव ने फोन किया तो सुराया ने आवाज सुनते ही फिर से रोने लगी। घर में भी नानी सुराया की पहरेदारी करती थी। फोन पर किससे बात करना या घर में कौन लोग आते जाते हैं, नानी माँ डरती थी कि शायद देवानंद का कोई दोस्त संदेश लेकर आ जाए। सुराया को मना था टेलीफोन उठाने को और देवानंद कोशिश करते रहे। फिर एक दिन जब उसने फोन किया तो सुराया की माँ फोन उठाई। उसने कहा, देव तुम सुराया से कल रात को 11 और 11:30 बजे के दरमियान छत पर मिल सकते हैं। पहले तो वो खुश हुआ, फिर ख्याल आया ये साजिश तो नहीं है। वो अब उलझन में थे। सुराया की माँ पर उसे यकीन था क्योंकि परिवार में वो एक ही थी जो देव का साथ दिया। देवानंद और सुराया से मिलन होगा या नहीं, सुनाते हैं एक गीत के बाद। गीत जो हम आपको सुनाने को जा रही हूँ फिल्म बारिश का है, जिसमें देवानंद अदाकारा नूटन के साथ काम किया था।

नहीं डरेगा हम तो जानी प्यार करेगा। इसी जज्बा के साथ देवनंद आखिर में फैसला किया कल रात 11 बजे के बाद सुरैया से मिलने को। अपने हिफाजत के लिए उसने अपना दोस्त जो पुलिस इंस्पेक्टर था साथ लेकर गया। पुलिस दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें फ्लैशलाइट देता हूँ, कोई खतरा हो तो इससे इशारा करना, मेरे पास रिवॉल्वर है, हम नीचे आपका इंतज़ार करेंगे। सुरैया अपने रिश्तेदार के साथ मैरिन ड्राइव में 6वीं मंजिल पर रहती थी और सुरैया की माँ ने कही थी कि देव तुम सीढ़ी से ऊपर जाओगे, वहाँ छत पर सुरैया तेरा इंतज़ार करेगी। अपना पुलिस दोस्त से सब तय करने के बाद अगले दिन रात को 11 बजे सीढ़ी से देव ऊपर गया। सुरैया देव का इंतजार कर रही थी। बिना एक शब्द कहे दोनों आपस में लिपट कर देर तक खड़े थे और वो रो रही थी। देवनंद ने कहा, नानी माँ और मामू जान उसके जज्बात को बहुत ठेस लगाए थे। उनका तड़प अपने प्यारी नोजी से मिलने के लिए वो नहीं बयां कर सकते थे और आज वो अपने नोजी के पास है, उनके कदमों में। सुबह की पहली किरण जब नजर आने लगी तो दोनों अलग हो गए। बड़ी मगन में अगले दिन शूटिंग के लिए देव घर से निकला। दिविचा को देखते ही उसने कहा, दोस्त मेरा एक काम करोगे, फिर से खत ले जाना है क्या? नहीं नहीं, देव ने हंसकर कहा, इस बार मंगनी के अंगूठी ले जाना है। सवेरी बाजार में सबसे कीमती हीरे के अंगूठी देवनंद ने सुरैया के लिए खरीदा। दो दिन बाद दिविजा सुरैया का घर गया और मौका पाते ही सुरैया को अंगूठी दिया। इसे लेकर वो फौरन अपने कमरा में गई, अंगूठी को चूम कर पहन लिया। फिर जाकर दिविचा से कहा, आप जाकर उनसे कह देना अंगूठी कबूल किया और इसके साथ उन दोनों की मंगनी भी हो गई। देव ने कहा, वो अब सातवीं आसमान में उड़ रहा था, दुनिया का सबसे खुश नसीब शख्स थे। पर कब तक? दिन बीते, हफ्ते गए, सुरैया की तरफ से ना कोई खत ना कोई संदेश। देवनंद अब घबराहट महसूस कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि ऐसे क्या हुआ था सुरैया के साथ। दिविचा से कहा, माय फ्रेंड, एक आप ही है जो वहां से खबर ला सकते हैं। दिविचा अगले ही दिन जब सुरैया के घर गया तो नानी जब दरवाजा खोला तो नानी ने कहा, आज से ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। देवनंद का परिवार या दोस्त में जो भी है, सुरैया से मिलने की इजाजत नहीं है, ये मेरा हुक्म है, और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वजह क्या थी? देवनंद और सुरैया का मिलन होगा या नहीं, अगले प्रोग्राम में हम बयां करेंगे। हाँ, एक बात है, वो महसूस कर रहा था कि सुरैया के साथ ना इंसाफी हो रहा है।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने अदाकार देवानंद की फिल्मी सफर के बारे में बयान किया। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं।

कमाल का नगमा पेश था मुकेश की दर्द भरी आवाज में। बदलते मौसम पे अपनी उम्मीदें ना रखना, दिन बहारों के बड़े मुख्तसर हुआ करते हैं।

भी ये सावन का मौसम सुमन कल्याणपुर से पेश था ये नगमा, मौसिकार रोशन की मौसिकी थी, कलाम शकील बड़ायुनी का। कब यारे तेरा साथ नहीं, कब बातों में तेरा जिक्र नहीं, सदमा तो है मुझे, सदमा तो है मुझे कि तुझसे जुड़ा हूँ।

0: लो झुक गया आसमां भी, सदाबहार नगमा पेश था शंकर जयकिशन का संगीत, गीतकार थे हसरत जयपुरी और कानों में रस घोलने वाली आवाज थी रफी साहब की। अब सुनवाते हैं मन्ना डे और आशा भोसले से ये डुएट।
1: सम्मा ये प्यार का

0: अंदाज में पेश था ये जुगल गीत। इजाजत हो तो एक शिकायत करूँ तुमसे, बहुत वक्त देते हो पर ना जाने किसको। तो सुनो स्टेला, तेरा जॉनी था अब तक अकेला, हाय बेचारा।
1: स्टेला तेरा जॉनी था अब तक अकेला,
2: जॉनी

सुनहरी दौर का सदाबहार डुएट आपने अभी महेंद्र कपूर और मीना कपूर की आवाज़ों में सुना। इसी अंदाज में सुनवाते हैं अगला दो गाना।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टर्डम स्टूडियो से नशर किया जाता है। एक बार फिर प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और जहाँ से भी आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आप भी इसे लुत्फ उठा रहे हैं।

छोड़ देंगे हम। उदित नारायण से आपने अभी ये गीत सुना। संगीत देने वाले थे रूप कुमार राठौर, दर्श को लिखे थे साईद कादरी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। तेरे बिन सब कुछ होता है, बस बस गुजारा नहीं होता।

रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे नगमा सुनने के बाद। मदन मोहन की मौसिकी थी और राजा मेहदी अली खान ने तर्क लिखे थे। मेरी खुशी, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाए, जो एक तू मिले, जो एक तू मिले, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाए।

0: ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नदीम श्रवण संगीत से सवारे थे और शायर समीर का लिखा तर्ज था। किशोर कुमार और आशा भोसले से आइए सुने ये डुएट।
1: क्या तेरी जुल्फे हैं,

लक्ष्मीकंद प्यारे लाओ का संगीत रचना गीत रचना असद भोपाली का था। अब हम आपको मोहम्मद रफ़ी साहेब से ये नगमा सुनवाते हैं, तो लीजिए लुत्फ़ उठाइए उन्हीं की शहद भरी आवाज़ से।

फिल्म काजल में से ये नगमा पेश था। मौसिकार रवि की मौसिकी थी, कलाम था शायर साहिर लुधियानवी का। गीतों का नशा आज सर चढ़ कर बोलता है, आप नहीं सुनते तो स्वरों की महफिल कैसे सजते। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। एक बार फिर रफी साहब से आइए सुने ये।

दिल छू लेने वाले नुहमा पेश था मौसिकार ओपी नैयर की मौसिकी और मजरू सुल्तानपुरी का कलाम था। मिजाज अपना मिला ही नहीं जमाने में, ना मैं हुआ कभी इसका, ना मैं हुआ कभी इसका, ना ये जमाना मेरा। कैसे मिजाज आपके हैं?

बबला मेहता और अनुराधा पौडवाल से पेश था ये नगमा। संगीत से सवारे थे नदीम श्रवण। जिनके दिल पे चोट लगती है ना, वो आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। आरजू के फूल सहरा में खिल नहीं सकते। हम जिंदगी के दो किनारे हैं जो मिल नहीं सकते। जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी।

जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है। सदाबहार सॉन्ग पेश था, सांस से सजाए थे शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी का लिखा तर्ज था। मोहब्बत भरी अंदाज में सुनवाते हैं ये डुएट।

फिल्म गुमराह में से ये दो गाना पेश था। सांस देने वाले थे रवि बोल, साहिर लुधियानवी का था। पट भूला एक आया मुसाफिर लेके, मेरा मन दूर चला गया, सुनाएंगी आशा भोसले।

दिल छू लेने वाले गीत पेश था, संगीत से सजाए और तर्स को लिखे थे द ऑलराउंडर किशोर कुमार।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये डुएट मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में। प्रोग्राम में आखिरी गीत आइए सुने, आवाजें है किशोर कुमार और सुलोचना पंडित की।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। खादिमाती निशा।